0: श्रोतेहो, रेडिओ मनभावनच्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284499433 ह्या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 ह्या क्रमांकावर.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज है कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

0: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग, आपलं खानदेश आपली माणसं.
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो मन भावन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, इतिहास में एक से बढ़कर एक ताकतवर राजा और सम्राट हुए हैं जिन्होंने आधी दुनिया को जीत लिया, जिनके खजाने में सोना चांदी और हीरे जवाहरात के अंबार लगे थे. उनके एक इशारे पर लाखों की सेनाएं खड़ी हो जाती थीं. लेकिन क्या आप जानते हैं, जब उन महान सम्राटों की विदाई का वक्त आया, जब वे इस दुनिया से जाने लगे, तो उनके कफन से उनके दोनों हाथ बाहर निकाल दिए गए थे ताकि पूरी दुनिया देख सके कि इतना सब कुछ बटोरने वाला इंसान भी अंत में बिल्कुल खाली हाथ जा रहा है. कबीर साहब आज हमें उसी कड़वे मगर सबसे बड़े सच का आईना दिखा रहे हैं. वे कह रहे हैं कि संसार में जो कुछ भी तुम इकट्ठा कर रहे हो, वह मौत के दरवाजे के पार नहीं जा सकता. आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह आंखें खोल देने वाला दार्शनिक सूत्र. कबीर यहू तन जात है, सके तो लेहू बहोड़ी, नांगे हाथू ते गए जिनके लाखी करोड़ी. कबीर यहू तन जात है,

0: थोड़ी। श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, यहू तन जात है, यह बात गांठ बांध लो कि यह शरीर हर पल तुम्हारे हाथ से छूट रहा है। यह नश्वर है और इसका अंत निश्चित है। सके तो लेहू बहोड़ी, अगर तुम में जरा भी विवेक है तो इसे, इस जाते हुए शरीर को, इस बहती हुई सांसों की पूंजी को बहोड़ी यानी आप वापस समेट लो। इसे सांसारिकता के भटकाओं से मोड़कर आत्मज्ञान की तरफ लगा दो। ऐसा वे क्यों कह रहे हैं? अगली पंक्ति में वे संसार के सबसे अमीर लोगों का सच बताते हैं। नांगे हाथों ते गए, इस दुनिया से वे लोग बिल्कुल खाली हाथ यानी नंगे हाथ चले गए, जिनके लाखी करोड़ी, जिनके पास लाखों और करोड़ों की दौलत थी, अपार धन संपदा थी, अपार ताकत थी, जिनके पास सुख साधनों का साम्राज्य था। जब काल का बुलावा आया तो उनकी कौड़ी भी उनके काम नहीं आई। तो इसे दर्शन शास्त्र की दृष्टि से समझें तो यह दोहा संग्रह और विसर्जन के बीच के शाश्वत नियम को समझाता है। मनुष्य अपनी पूरी ऊर्जा बाहरी संपदा को इकट्ठा करने में लगा देता है, यह सोचकर कि यह संपदा उसे सुरक्षा देगी। लेकिन कबीर समझा रहे हैं कि भौतिक संपदा केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरी कर सकती हैं, आत्मा की नहीं। मृत्यु के क्षण में जब शरीर भी छूट जाता है तो शरीर से जुड़ी हर चीज़ यही छूट जाती है। जो इंसान केवल बाहर बटोरता रहा वह भीतर से पूरी तरह दरिद्र रह जाता है, खाली हो जाता है। असली समझदारी इस बाहरी भटकाव को बहोड़ना यानी वापस भीतर की ओर मोड़ना है, ताकि हम उस आत्मधन को कमा सके जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहेगा। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी तिजोरियों और अपनी चिंताओं को देखिए। हम दिन रात किन चीज़ों को बटोरने के लिए परेशान हो रहे हैं? जिन लाखों करोड़ों के पीछे हम अपनों से रिश्ते तोड़ रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, क्या हमें काल के पंजे से बचा पाएंगे? आज कोशिश कीजिए अपनी चेतना को बाहर से समेटकर भीतर की ओर लाने की। जब यह तय है कि सब कुछ यही छूट जाना है तो फिर इस संसार में इतनी आसक्ति क्यों? अपनी सांसों की पूंजी को परमात्मा के सिमरन में, सेवा में और आत्मकल्याण में लगाइए। अपनी बाहरी दौड़ को रोकिए और भीतर की यात्रा शुरू कीजिए, ताकि जब यहाँ से जाने का वक्त आए तो आपकी आत्मा खाली हाथ ना हो, बल्कि वह परमात्मा के आनंद से भरपूर हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: रेडियो मन भावन 90.8 FM, always heart touching।
2: ए मनुष्य, तू इस संपूर्ण विश्व में सहस्त्रों जीव जंतुओं, पशु पक्षियों से अलग, यह तुझ पर किसी की कृपा, किसी की नहीं, तुझ पर किसी के उपकार, किसी के भी नहीं। यूं तो तुझ पर आने वाली विपदाएं, मृत्यु और बीमारियां, यह भी तो किसी की अवकृपा, किसी की भी नहीं। इस संपूर्ण सृष्टि का है वह प्राकृतिक नियम, विविध घटकों के समुच्चय से, सम्मिलन से, कर्म सृजन के उत्क्रांतिगत यात्राओं से निर्माण होता है नव सृजन। शुद्ध अशुद्ध अस्तित्व का होता है समय निश्चित, उस सत्य से तू अनजान कैसे? तेरे मस्तिष्क की सर्जन क्रिया भिन्न क्यों? क्यों भागता है तू सत्य से दूर? धकेल देता है स्वयं को कल्पना की खाई में बेमालूम ढंग से। तेरा बुद्धिवाद अपाहिज हुआ, तुझ में सामर्थ्य होते हुए भी गुलाम बन गया है तू। घबराता है आफत से, घबराता है समर से, और भयक्रांत हुआ है मृत्यु से। तुझे ज्ञात हुआ तेरा सामर्थ्य, तेरी बौद्धिक कुवत, तेरा बुद्धिवाद अपूर्ण है विपदाओं से लड़ने के लिए, मृत्यु से दो हाथ करने के लिए, वेदनाओं से तिल मिलाया तू। तुझे तेरा अस्तित्व सामर्थ्यहीन महसूस हुआ, इसीलिए काल्पनिक शक्ति का आधार खोजता हुआ तू भाग रहा है और भागता ही रहा है। भाग ही रहे हो विपत्तियों से, संघर्ष से, भय को साथ लिए, क्रोध द्वेष तथा लालच और मोह को खुद के साथ नचाते हुए। अपने अनुरूप कुछ होता नहीं, इसलिए क्रोध को जगाते हुए अपने सुख सुविधाओं के आड़ कोई आ रहा है, इसलिए ध्येय को निरर्थक पुचकारते हुए तू बेतहाशा दौड़ रहा है, घबरा कर, बिना सोचे, अज्ञानी की तरह, आकलन विरहित। अस्तित्व की मौजूदगी के होने तक भविष्य की कल्पनाओं को पुचकारते हुए स्वप्नवत उम्मीद से तेरी बुद्धि को स्पष्टतः आकलन नहीं हुआ है तुझ में ही छिपे हुए दोषों का सिलसिला। तू बुद्धिमान होकर भी नहीं हटा सका उसे बाहर, नहीं कर पाए ऑपरेशन तुम अंदर दबे बैठे विकारों का। तब ये विकार पीछा करते रहे हैं तेरा निरंतर जिंदगी भर। तू बार बार कल्पनाओं में उलझा रहा विकारों से निपटने के लिए। तेरे ही समूह के किसी ने अधिकार भाव से घोषणा ऐसी की, मुझे ज्ञात हुआ है, मैं कह सकता हूं, इस अहम से निर्माण होने लगे हैं पृथक पृथक रीति से समूह, कल्पनाओं के, संकल्पनाओं के, मानवीय विचार प्रवाह, और विविध मठों और पीठों की स्थापनाएं होती गई, मठाधिपति।
3: आपण ट्यून केला आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग, आपला खानदेश, आपली माणसं।
4: गीताई अध्याय 4, कर्मयोग सहकारी साधना विकर्म अथवा ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान म्हणाले, योग हा अविनाशी, मी स्वये सूर्यास बोलिलो, मनुस बोलिला सूर्य तो इक्ष्वाकूस त्यापरी, अशा परंपरे तो निहारा जर्षीस लाभला, पुढे काळ बळाने तो ह्या लोकी योग लोपला, तो चिहा बोलिलो आज तुझ योग पुरातन, जीवीचे बुज हे थोर तू ही भक्त सखा तसा। अर्जुन म्हणाला, ह्या काळाचा तुझा जन्म सूर्याचा तो पुरातन, तू बोलिलास आरंभी हे मी जाणू कसे बरे। श्री भगवान म्हणाले, माझे अनेक ह्या पूर्वी झाले जन्म तसे तुझे, जाणतो सगळे मी ते अर्जुना तू न जाणसी, असुनीही अजन्मा मी निर्विकार जगत प्रभु, माझी प्रकृती वेढूनी मायेने जन्मतो जनू, गळूनी जातसे धर्म ज्या ज्या वेळेस अर्जुना, अधर्म उठतो भारी तेव्हा मी जन्म घेतसे, राखा वया जगी संता दुष्टा दूर करावया, स्थापा वया पुन्हा धर्म जन्मतो मी युगी युगी, जन्म कर्मी अशी दिव्य जो माझी नीट ओळखे, देह गेल्या पुन्हा जन्म न पावे भेटुनी मज, नाही तृष्णा भय क्रोध माझ्या सेवेत तन्मय, झाले ज्ञान तपे चोख अनेक मज पावले, भजती मज जे जैसे भजे तैसा चित्यास मी माझ्या मार्गास हे येती लोक कोणी कडू नही जे कर्म सिद्धिवांछु नियजिती येथ दैवते मनुष्य लोकी कर्माचे पावती फळ शीघ्रते निर्मिले वर्ण मी चारी गुण कर्मे विभागुनी करुणी सर्व हे जान अकर्ता निर्विकार मी कर्मे न बांधिती माते फळी इच्छा नसे मज माझे स्वरूप हे जाणे तो कर्मात ही मोकळा केली कर्मे मुमुक्षुन्ने पूर्वी हे तत्व जानुनी तैसी तू ही करी कर्मे त्यांचा घेवुनी तो धडा नेनती जानते तेही काय कर्म अकर्म हे तुझ ते सांगतो कर्म जानुनी सुटशील जे सामान्य कर्म जाणावे विकर्म ही विशेष जे अकर्म तेही जाणावे कर्माचे तत्व खोल हे कर्मी अकर्म जो पाहे अकर्मी कर्म जो तसे तो बुद्धिमंत लोकांत तो योगी कृतकृत्यतो उद्योग करितो सारे काम संकल्प सोडुनी ज्ञानाने जाळिली कर्मे म्हणती त्यास पंडित नित्यतृप्त निराधार नराखे फलवासना गेला घडून कर्मात तरी काही करीचिना संयमी सोडुनी सर्व इच्छे सह परिग्रह शरीरे चिकरी कर्म दोष त्यास न लागतो मिळे ते चिकरी गोड न जाणे द्वंद्व मत्सर फळो जळो जया एक करुणी ही न बांधिला ज्ञानात बैसली वृत्ती संग सोडूनी मोकळा यज्ञार्थ करितो कर्म जाय सर्व जिरुणिते ब्रह्मात होमिले ब्रह्म ब्रह्माने ब्रह्म लक्षुनी ब्रह्मी मिसळले कर्म तेव्हा ब्रह्मची पावला देवताराधने यज्ञ योगी कोणी अनुष्ठिती ब्रह्माग्नी ततसे कोणी यज्ञे यज्ञत्व जाळिती क्षोत्रादि इंद्रिये कोणी संयमाग्नीत होमिती कोणी विषय शब्दादि इंद्रियाग्नीत अर्पिती प्राणेन्द्रिय क्रिया कोणी सर्व होमोनी टाकिती चिंतनाने समाधीस अंतरी चेतवुनिया द्रव्ये जपे तपे योगे चिंतने वा अशापरी संयमी यजिती यज्ञ व्रते प्रखर राखुनी होमीति एकमेकांत कोणी प्राण अपानते रोधु निगति दोहोंची प्राणायामास साधिति प्राणात होमीति प्राण कोणी आहार तोडुनी यज्ञ वेत्तेची हे सारे यज्ञाने दोष जाळिति यज्ञशेषामृते धाले पावले ब्रह्मशाश्वत न यज्ञा विनहा लोक कोठूनी परलोकतो विशेष बोलिले वेदे असे यज्ञ अनेक हे कर्माने घडिले जान जानुने सुटशील तू द्रव्य यज्ञादिकाहूनी ज्ञान यज्ञ चितोरतो पावती सगळी कर्मे अंती ज्ञानात पूर्णता सेवा करुणि ते जाण नम्रभावे पुसूनिया ज्ञानोपदेश देतील ज्ञानी अनुभवी तुझ ज्या ज्ञानाने असा मोहन पुन्हा पावशील तू आत्म्यात आणि माझ्यात भूते निःशेष देखुनी जरी पाप्यांमध्ये पापी असशील शिरोमणी तरी ह्या ज्ञान नौकेने पापते तरशील तू संपूर्ण पेटला अग्नी काष्टे जाळुनी टाकितो तसा ज्ञानाग्नितो सर्व कर्मे जाळुनी टाकितो ज्ञानास मनसे काही पवित्र दुसरे जगी योग युक्त यथा काळी ते पावे अंतरी स्वये श्रद्धेने मेळवी ज्ञान संयमी नित्य सावध ज्ञानाने शीघ्र तो पावे शांती शेवटची मग नसे ज्ञान नसे श्रद्धा सई संशयी नासला पुरा न हा लोक न तो लोक न पावे सुख संशयी योगाने झाडिली कर्मे ज्ञाने संशय तोडिले जो सावधान आत्म्यात कर्मे त्यास न बांधिती मनोनी अंतरातील अज्ञान कृत संशय तोडो नि ज्ञान खड्गाने ओठतु योग साधुनी। अध्याय चौथा समाप्त।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मन भावन 90.8 FM।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, भारत भूमि में ऐसी पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा और देशहित के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ही भारत के एक महापुरुष थे जिन्हें हम सभी आदर और सम्मान से दादा भाई के नाम से जानते हैं, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। अंग्रेजी शासनकालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी और भारत के आरंभिक राजनेताओं के अग्रज और सामाजिक नेता थे दादा भाई। 4 सितंबर सन 1825 को दादा भाई का जन्म मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि दादा भाई के पूर्वज बड़ौदा के पास नवसारी के रहने वाले थे, जो सुगंधित फूलों और इत्र की खुशबू के लिए प्रसिद्ध था। उनके पुरखे चांदजी कामदिन बेहद खुशबूदार लाजवाब इत्र तैयार करने की कला में माहिर थे, जिनकी प्रसिद्धि नूरजहां बेगम के कानों तक पहुंची और उन्हें इनाम के बतौर जागीर दी गई। 4 साल की छोटी सी बाल्यावस्था में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन उनकी मां ने बेहद समझदारी से दादा भाई का पालन पोषण किया, साथ ही उन्हें शिक्षित करने में भी पूरा सहयोग दिया। दादा भाई हमेशा कहते थे कि वो जीवन में जो भी बन सके सिर्फ अपनी माँ की वजह से। देशभक्ति की भावना और चरित्र निर्माण में सदैव अपनी जननी और मातृभूमि के लिए वो ऋणी रहे।

दादा भाई नौरोजी के समय सौभाग्य से उन दिनों शिक्षा बिल्कुल मुफ्त हुआ करती थी, जिसका फायदा उन्हें ये मिला कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए। इस बात का बेहद गहरा प्रभाव उनके जीवन पर और उनके विचारों पर भी पड़ा और वो जीवन पर्यंत मुफ्त शिक्षा के ऋणी रहे। उनका विचार था कि हर बच्चे को, चाहे वो गरीब हो या अमीर, उसे शिक्षा प्राप्त करने की सहूलियत मिले। दादा भाई बचपन से ही होशियार और मृदभाषी थे। दादा भाई नौरोजी ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के पहले दौर में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में शिक्षा पाई और एक मेधावी छात्र के तौर पर अपना स्थान सुरक्षित किया था। उसी संस्था में शिक्षक के रूप में जीवन का आरंभ किया और वहीं गणित के प्रोफेसर भी बन गए। भारतीयों के लिए तो उन दिनों किसी शैक्षणिक संस्थाओं में ये सर्वोच्च पद था जो उन्होंने हासिल करके दिखाया था। लेकिन अचानक से जीवन में एक नया मोड़ आया। कपास के प्रसिद्ध व्यापारी बंधु कैमास ने दादा भाई को अपने व्यापार में साझेदारी का न्योता दिया। लंदन के लिवरपूल में उनका कार्यालय बनवाने के लिए वो इंग्लैंड चले गए, लेकिन फर्म में अफीम और मदिरा का व्यापार भी होने लगा। दादा भाई को ये पसंद नहीं आया, वो फर्म छोड़कर वापस भारत लौट आए। इंग्लैंड में रहने से उन्हें इंग्लैंड और भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हालतों की तुलना करने का अवसर मिला और भारत की दुर्दशा देखकर पहले से भी ज्यादा बेचैन हो उठे। दादा भाई नौरोजी ने सन 1859 में इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी एंड कंपनी नाम से खुद की एक फर्म शुरू की, जो मुख्य रूप से कपास का व्यापार करती थी। इंग्लैंड में शिक्षा पाने वाले भारतीय विद्यार्थी धीरे धीरे दादा भाई से प्रभावित हुए बिना न रह सके और इस अवसर का लाभ उन्होंने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों की भलाई के लिए लगा दिया। एक और उद्देश्य था जो दादा भाई साधना चाहते थे, वो ये था कि सरकारी प्रशासकीय संस्थाओं का अधिक से अधिक भारतीयकरण करने का आंदोलन तीव्र हो। उनके प्रयास कुछ हद तक सार्थक भी रहे और जो विद्यार्थी उनके संपर्क में आए उनके विचारों के समर्थक हो गए। उनमें सुप्रसिद्ध मोहनदास करमचंद गांधी और फिरोज शाह मेहता जैसे नाम प्रमुख हैं।

लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना अंग्रेजों और भारतीयों के संबंध के सुधार के लिए हुई। दादा भाई की लिखी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पढ़कर कितने ही अंग्रेज भारत से सहानुभूति रखने लगे और भारतीयों की स्थिति से अवगत हुए। सन 1886 में दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। लगभग 6 सालों बाद वो ब्रिटेन की लोकसभा के सदस्य चुने गए। उनकी दलीलों का परिणाम सकारात्मक हुआ और भारत के सैनिक और असैनिक आए। साथ ही व्यय की जांच के लिए वेल्बी कमीशन बैठाया गया। वो ब्रिटेन की सभा से भारत के प्रति अपना पक्ष हमेशा रखते रहे। उनका कहना था कि अंग्रेजी राज की खराबियां तभी दूर हो सकती हैं जब अंग्रेज घरेलू मामलों से भारतीयों को स्वशासन के अधिकार सौंप देंगे। 81 साल की परिपक्व आयु में दिसंबर सन 1906 में दादा भाई तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वो संयम और कठोर परिश्रम को अच्छी सेहत का राज कहते थे और स्वयं पालन भी किया करते थे। लगभग आधे दशक तक दादा भाई ने भारतीयों के विश्वास का मान रखा, भारत की जनता की अटूट श्रद्धा को सदैव सर्वोपरि सम्मान दिया। वो भारतीयों के संदेशवाहक और राजदूत थे जिन्होंने ब्रिटेन और भारत के संबंधों के सुधार और भारतीयों के अधिकारों के लिए कभी समझौता नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों के बीच एक अहम स्थान भी बना लिया। 30 जून सन 1917 को भारत के पितामह अपने समस्त भारतीय परिवार को छोड़कर इस संसार सागर से विदा हो गए। ये दादा भाई के कार्यों का प्रभाव था। जो पुण्य काम उन्होंने प्रारंभ किया उसे गांधी जी जैसे उत्तराधिकारी मिले। कोटि कोटि नमन हमारे ऐसे पितामह दादा भाई नौरोजी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन श्री पंकज राग, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।

0: श्रोतेहो, रेडिओ मनभावनच्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284499433 ह्या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 ह्या क्रमांकावर.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

0: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग, आपलं खानदेश आपली माणसं.
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो मन भावन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, इतिहास में एक से बढ़कर एक ताकतवर राजा और सम्राट हुए हैं जिन्होंने आधी दुनिया को जीत लिया, जिनके खजाने में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के अंबार लगे थे. उनके एक इशारे पर लाखों की सेनाएं खड़ी हो जाती थीं. लेकिन क्या आप जानते हैं, जब उन महान सम्राटों की विदाई का वक्त आया, जब वे इस दुनिया से जाने लगे, तो उनके कफन से उनके दोनों हाथ बाहर निकाल दिए गए थे ताकि पूरी दुनिया देख सके कि इतना सब कुछ बटोरने वाला इंसान भी अंत में बिल्कुल खाली हाथ जा रहा है. कबीर साहब आज हमें उसी कड़वे मगर सबसे बड़े सच का आईना दिखा रहे हैं. वे कह रहे हैं कि संसार में जो कुछ भी तुम इकट्ठा कर रहे हो, वह मौत के दरवाजे के पार नहीं जा सकता. आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह आंखें खोल देने वाला दार्शनिक सूत्र. कबीर यहू तन जात है, सके तो लेहू बहोड़ी, नांगे हाथू ते गए जिनके लाखी करोड़ी. कबीर यहू तन जात है,

0: बड़ी। श्रोताओं, कबीर साहब कहते हैं, यहू तन जात है, यह बात गांठ बांध लो कि यह शरीर हर पल तुम्हारे हाथ से छूट रहा है। यह नश्वर है और इसका अंत निश्चित है। सके तो लेहू बहोड़ी, अगर तुम में जरा भी विवेक है तो इसे, इस जाते हुए शरीर को, इस बहती हुई सांसों की पूंजी को बहोड़ी यानी वापस समेट लो। इसे सांसारिकता के भटकाओं से मोड़कर आत्मज्ञान की तरफ लगा दो। ऐसा वे क्यों कह रहे हैं? अगली पंक्ति में वे संसार के सबसे अमीर लोगों का सच बताते हैं। नांगे हाथों ते गए, इस दुनिया से वे लोग बिल्कुल खाली हाथ यानी नंगे हाथ चले गए, जिनके लाखी करोड़ी, जिनके पास लाखों और करोड़ों की दौलत थी, अपार धन संपदा थी, अपार ताकत थी, जिनके पास सुख साधनों का साम्राज्य था। जब काल का बुलावा आया तो उनकी कौड़ी भी उनके काम नहीं आई। तो इसे दर्शन शास्त्र की दृष्टि से समझें तो यह दोहा संग्रह और विसर्जन के बीच के शाश्वत नियम को समझाता है। मनुष्य अपनी पूरी ऊर्जा बाहरी संपदा को इकट्ठा करने में लगा देता है, यह सोचकर कि यह संपदा उसे सुरक्षा देगी। लेकिन कबीर समझा रहे हैं कि भौतिक संपदा केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरी कर सकती हैं, आत्मा की नहीं। मृत्यु के क्षण में जब शरीर भी छूट जाता है तो शरीर से जुड़ी हर चीज़ यही छूट जाती है। जो इंसान केवल बाहर बटोरता रहा वह भीतर से पूरी तरह दरिद्र रह जाता है, खाली हो जाता है। असली समझदारी इस बाहरी भटकाव को बहोड़ना यानी वापस भीतर की ओर मोड़ना है, ताकि हम उस आत्मधन को कमा सके जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहेगा। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी तिजोरियों और अपनी चिंताओं को देखिए। हम दिन रात किन चीज़ों को बटोरने के लिए परेशान हो रहे हैं? जिन लाखों करोड़ों के पीछे हम अपनों से रिश्ते तोड़ रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, क्या हमें काल के पंजे से बचा पाएंगे? आज कोशिश कीजिए अपनी चेतना को बाहर से समेटकर भीतर की ओर लाने की। जब यह तय है कि सब कुछ यही छूट जाना है तो फिर इस संसार में इतनी आसक्ति क्यों? अपनी सांसों की पूंजी को परमात्मा के सिमरन में, सेवा में और आत्मकल्याण में लगाइए। अपनी बाहरी दौड़ को रोकिए और भीतर की यात्रा शुरू कीजिए, ताकि जब यहाँ से जाने का वक्त आए तो आपकी आत्मा खाली हाथ ना हो, बल्कि वह परमात्मा के आनंद से भरपूर हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: रेडियो मन भावन 90.8 FM, always heart touching।
2: ए मनुष्य, तू इस संपूर्ण विश्व में सहस्त्रों जीव जंतुओं, पशु पक्षियों से अलग, यह तुझ पर किसी की कृपा, किसी की नहीं, तुझ पर किसी के उपकार, किसी के भी नहीं। यूं तो तुझ पर आने वाली विपदाएं, मृत्यु और बीमारियां, यह भी तो किसी की अवकृपा, किसी की भी नहीं। इस संपूर्ण सृष्टि का है वह प्राकृतिक नियम, विविध घटकों के समुच्चय से, सम्मिलन से, कर्म सृजन के उत्क्रांतिगत यात्राओं से निर्माण होता है नव सृजन। शुद्ध अशुद्ध अस्तित्व का होता है समय निश्चित, उस सत्य से तू अनजान कैसे? तेरे मस्तिष्क की सर्जन क्रिया भिन्न क्यों? क्यों भागता है तू सत्य से दूर? धकेल देता है स्वयं को कल्पना की खाई में बेमालूम ढंग से। तेरा बुद्धिवाद अपाहिज हुआ, तुझ में सामर्थ्य होते हुए भी गुलाम बन गया है तू। घबराता है आफत से, घबराता है समर से, और भयक्रांत हुआ है मृत्यु से। तुझे ज्ञात हुआ तेरा सामर्थ्य, तेरी बौद्धिक कुवत, तेरा बुद्धिवाद अपूर्ण है विपदाओं से लड़ने के लिए, मृत्यु से दो हाथ करने के लिए, वेदनाओं से तिल मिलाया तू। तुझे तेरा अस्तित्व सामर्थ्यहीन महसूस हुआ, इसीलिए काल्पनिक शक्ति का आधार खोजता हुआ तू भाग रहा है और भागता ही रहा है। भाग ही रहे हो विपत्तियों से, संघर्ष से, भय को साथ लिए, क्रोध द्वेष तथा लालच और मोह को खुद के साथ नचाते हुए। अपने अनुरूप कुछ होता नहीं, इसलिए क्रोध को जगाते हुए अपने सुख सुविधाओं के आड़ कोई आ रहा है, इसलिए ध्येय को निरर्थक पुचकारते हुए तू बेतहाशा दौड़ रहा है। घबरा कर बिना सोचे अज्ञानी की तरह आकलन विरहित अस्तित्व की मौजूदगी के होने तक भविष्य की कल्पनाओं को पुचकारते हुए स्वप्नवत उम्मीद से। तेरी बुद्धि को स्पष्टतः आकलन नहीं हुआ है तुझमें ही छिपे हुए दोषों का सिलसिला। तू बुद्धिमान होकर भी नहीं हटा सका उसे बाहर, नहीं कर पाए ऑपरेशन तुम अंदर दबे बैठे विकारों का। तब ये विकार पीछा करते रहे हैं तेरा निरंतर जिंदगी भर। तू बार बार कल्पनाओं में उलझा रहा विकारों से निपटने के लिए। तेरे ही समूह के किसी ने अधिकार भाव से घोषणा ऐसी की, मुझे ज्ञात हुआ है, मैं कह सकता हूं। इस अहम से निर्माण होने लगे हैं पृथक पृथक रीति से समूह, कल्पनाओं के, संकल्पनाओं के, मानवीय विचार प्रवाह, और विविध मठों और पीठों की स्थापनाएं होती गई, मठाधिपति।
3: आपण ट्यून केला आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग, आपलं खानदेश, आपली माणसं।
4: गीताई अध्याय 4, कर्मयोग सहकारी साधना विकर्म अथवा ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान म्हणाले, योग हा अविनाशी, मी स्वये सूर्यास बोलिलो, मनुस बोलिला सूर्य तो इक्ष्वाकूस त्यापरी, अशा परंपरे तो निहारा जर्षीस लाभला, पुढे काळ बळाने तो ह्या लोकी योग लोपला, तो चिहा बोलिलो आज तुझ योग पुरातन, जीवीचे बुज हे थोर तू ही भक्त सखा तसा। अर्जुन म्हणाला, ह्या काळाचा तुझा जन्म सूर्याचा तो पुरातन, तू बोलिलास आरंभी हे मी जाणू कसे बरे। श्री भगवान म्हणाले, माझे अनेक ह्या पूर्वी झाले जन्म तसे तुझे, जाणतो सगळे मी ते अर्जुना तू न जाणसी, असुनीही अजन्मा मी निर्विकार जगत प्रभु, माझी प्रकृती वेढूनी मायेने जन्मतो जनू, गळूनी जातसे धर्म ज्या ज्या वेळेस अर्जुना, अधर्म उठतो भारी तेव्हा मी जन्म घेतसे, राखा वया जगी संता दुष्टा दूर करावया, स्थापा वया पुन्हा धर्म जन्मतो मी युगी युगी, जन्म कर्मी अशी दिव्य जो माझी नीट ओळखे, देह गेल्या पुन्हा जन्म न पावे भेटुनी मज, नाही तृष्णा भय क्रोध माझ्या सेवेत तन्मय, झाले ज्ञान तपे चोख अनेक मज पावले, भजति मज जे जैसे भजे तैसा चित्यास मी माझ्या मार्गास हे येती लोक कोणी कडू नही जे कर्म सिद्धि वांछु नियजिती येथ दैवते मनुष्य लोकी कर्माचे पावती फल शीघ्रते निर्मिले वर्ण मी चारी गुण कर्मे विभागुनी करुणी सर्व हे जान अकर्ता निर्विकार मी कर्मे न बांधिती माते फळी इच्छा नसे मज माझे स्वरूप हे जाणे तो कर्मात ही मोकळा केली कर्मे मुमुक्षुन्ने पूर्वी हे तत्व जानुनी तैसी तू ही करी कर्मे त्यांचा घेऊनी तो धडा नेन ती जानते तेही काय कर्म अकर्म हे तुझ ते सांगतो कर्म जानुनी सुटशील जे सामान्य कर्म जाणावे विकर्म ही विशेष जे अकर्म तेही जाणावे कर्माचे तत्व खोल हे कर्मी अकर्म जो पाहे अकर्मी कर्म जो तसे तो बुद्धिमंत लोकांत तो योगी कृतकृत्य तो उद्योग करितो सारे काम संकल्प सोडुनी ज्ञानाने जाळिली कर्मे म्हणती त्यास पंडित नित्यतृप्त निराधार नराखे फलवासना गेला घडून कर्मात तरी काही करीचिना संयमी सोडुनी सर्व इच्छे सह परिग्रह शरीरे चिकरी कर्म दोष त्यास न लागतो मिळे ते चिकरी गोड न जाणे द्वंद्व मत्सर फळो जळो जया एक करुणी ही न बांधिला ज्ञानात बैसली वृत्ती संग सोडूनी मोकळा यज्ञार्थ करितो कर्म जाय सर्व जिरुणिते ब्रह्मात होमिले ब्रह्म ब्रह्माने ब्रह्म लक्षुनी ब्रह्मी मिसळले कर्म तेव्हा ब्रह्मची पावला देवताराधने यज्ञ योगी कोणी अनुष्ठिती ब्रह्माग्नी ततसे कोणी यज्ञे यज्ञत्व जाळिती क्षोत्रादि इंद्रिये कोणी संयमाग्नीत होमिती कोणी विषय शब्दादि इंद्रियाग्नीत अर्पिती प्राणेन्द्रिय क्रिया कोणी सर्व होमो निटाकिती चिंतनाने समाधीस अंतरी चेतवूनिया द्रव्ये जपे तपे योगे चिंतने वा अशापरी संयमी यजिती यज्ञ व्रते प्रखर राखुनी होमीति एकमेकांत कोणी प्राण अपानते रोधु निगति दोहोंची प्राणायामास साधिति प्राणात होमीति प्राण कोणी आहार तोडुनी यज्ञ वेत्तेची हे सारे यज्ञाने दोष जाळिति यज्ञशेषामृते धाले पावले ब्रह्मशाश्वत न यज्ञा विनहा लोक कोठूनी परलोकतो विशेष बोलिले वेदे असे यज्ञ अनेक हे कर्माने घडिले जान जानुने सुटशील तू द्रव्य यज्ञादिकाहूनी ज्ञान यज्ञ चितोरतो पावती सगळी कर्मे अंती ज्ञानात पूर्णता सेवा करूनि ते जाण नम्रभावे पुसूनिया ज्ञानोपदेश देतील ज्ञानी अनुभवी तुज ज्या ज्ञानाने असा मोहन पुन्हा पावशील तू आत्म्यात आणि माझ्यात भूते निशेष देखुनी जरी पाप्यांमध्ये पापी असशील शिरोमणी तरी ह्या ज्ञान नौकेने पापते तरशील तू संपूर्ण पेटला अग्नी काष्टे जाळुनी टाकितो तसा ज्ञानाग्नितो सर्व कर्मे जाळुनी टाकितो ज्ञानास मनसे काही पवित्र दुसरे जगी योग युक्त यथा काळी ते पावे अंतरी स्वये श्रद्धेने मेळवी ज्ञान संयमी नित्य सावध ज्ञानाने शीघ्र तो पावे शांती शेवटची मग नसे ज्ञान नसे श्रद्धा सई संशयी नासला पुरा न हा लोक न तो लोक न पावे सुख संशयी योगाने झाडिली कर्मे ज्ञाने संशय तोडिले जो सावधान आत्म्यात कर्मे त्यास न बांधिती मनोनी अंतरातील अज्ञान कृत संशय तोडो नि ज्ञान खड्गाने ओठतु योग साधुनी। अध्याय चौथा समाप्त।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मन भावन 90.8 FM।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, भारत भूमि में ऐसी पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा और देशहित के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ही भारत के एक महापुरुष थे जिन्हें हम सभी आदर और सम्मान से दादा भाई के नाम से जानते हैं, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। अंग्रेजी शासनकालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी और भारत के आरंभिक राजनेताओं के अग्रज और सामाजिक नेता थे दादा भाई। 4 सितंबर 1825 को दादा भाई का जन्म मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि दादा भाई के पूर्वज बड़ौदा के पास नवसारी के रहने वाले थे, जो सुगंधित फूलों और इत्र की खुशबू के लिए प्रसिद्ध था। उनके पुरखे चांदजी कामदिन बेहद खुशबूदार लाजवाब इत्र तैयार करने की कला में माहिर थे, जिनकी प्रसिद्धि नूरजहां बेगम के कानों तक पहुंची और उन्हें इनाम के बतौर जागीर दी गई। 4 साल की छोटी सी बाल्यावस्था में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया, लेकिन उनकी मां ने बेहद समझदारी से दादा भाई का पालन पोषण किया, साथ ही उन्हें शिक्षित करने में भी पूरा सहयोग दिया। दादा भाई हमेशा कहते थे कि वो जीवन में जो भी बन सके सिर्फ अपनी माँ की वजह से। देशभक्ति की भावना और चरित्र निर्माण में सदैव अपनी जननी और मातृभूमि के लिए वो ऋणी रहे।

दादा भाई नौरोजी के समय सौभाग्य से उन दिनों शिक्षा बिल्कुल मुफ्त हुआ करती थी, जिसका फायदा उन्हें ये मिला कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए। इस बात का बेहद गहरा प्रभाव उनके जीवन पर और उनके विचारों पर भी पड़ा और वो जीवन पर्यंत मुफ्त शिक्षा के ऋणी रहे। उनका विचार था कि हर बच्चे को, चाहे वो गरीब हो या अमीर, उसे शिक्षा प्राप्त करने की सहूलियत मिले। दादा भाई बचपन से ही होशियार और मृदुभाषी थे। दादा भाई नौरोजी ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना के पहले दौर में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में शिक्षा पाई और एक मेधावी छात्र के तौर पर अपना स्थान सुरक्षित किया था। उसी संस्था में शिक्षक के रूप में जीवन का आरंभ किया और वहीं गणित के प्रोफेसर भी बन गए। भारतीयों के लिए तो उन दिनों किसी शैक्षणिक संस्थाओं में ये सर्वोच्च पद था जो उन्होंने हासिल करके दिखाया था। लेकिन अचानक से जीवन में एक नया मोड़ आया। कपास के प्रसिद्ध व्यापारी बंधु कैमास ने दादा भाई को अपने व्यापार में साझेदारी का न्योता दिया। लंदन के लिवरपूल में उनका कार्यालय बनवाने के लिए वो इंग्लैंड चले गए, लेकिन फर्म में अफीम और मदिरा का व्यापार भी होने लगा। दादा भाई को ये पसंद नहीं आया, वो फर्म छोड़कर वापस भारत लौट आए। इंग्लैंड में रहने से उन्हें इंग्लैंड और भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालतों की तुलना करने का अवसर मिला और भारत की दुर्दशा देखकर पहले से भी ज्यादा बेचैन हो उठे। दादा भाई नौरोजी ने सन 1859 में इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी एंड कंपनी नाम से खुद की एक फर्म शुरू की, जो मुख्य रूप से कपास का व्यापार करती थी। इंग्लैंड में शिक्षा पाने वाले भारतीय विद्यार्थी धीरे धीरे दादा भाई से प्रभावित हुए बिना न रह सके और इस अवसर का लाभ उन्होंने इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों की भलाई के लिए लगा दिया। एक और उद्देश्य था जो दादा भाई साधना चाहते थे, वो ये था कि सरकारी प्रशासकीय संस्थाओं का अधिक से अधिक भारतीयकरण करने का आंदोलन तीव्र हो। उनके प्रयास कुछ हद तक सार्थक भी रहे और जो विद्यार्थी उनके संपर्क में आए उनके विचारों के समर्थक हो गए। उनमें सुप्रसिद्ध मोहनदास करमचंद गांधी और फिरोज शाह मेहता जैसे नाम प्रमुख हैं।

लंदन में इंडियन सोसाइटी की स्थापना अंग्रेजों और भारतीयों के संबंध के सुधार के लिए हुई। दादा भाई की लिखी पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पढ़कर कितने ही अंग्रेज भारत से सहानुभूति रखने लगे और भारतीयों की स्थिति से अवगत हुए। सन 1886 में दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। लगभग 6 सालों बाद वो ब्रिटेन की लोकसभा के सदस्य चुने गए। उनकी दलीलों का परिणाम सकारात्मक हुआ और भारत के सैनिक और असैनिक आए। साथ ही व्यय की जांच के लिए वेल्बी कमीशन बैठाया गया। वो ब्रिटेन की सभा से भारत के प्रति अपना पक्ष हमेशा रखते रहे। उनका कहना था कि अंग्रेजी राज की खराबियां तभी दूर हो सकती हैं जब अंग्रेज घरेलू मामलों से भारतीयों को स्वशासन के अधिकार सौंप देंगे। 81 साल की परिपक्व आयु में दिसंबर सन 1906 में दादा भाई तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वो संयम और कठोर परिश्रम को अच्छी सेहत का राज कहते थे और स्वयं पालन भी किया करते थे। लगभग आधे दशक तक दादा भाई ने भारतीयों के विश्वास का मान रखा, भारत की जनता की अटूट श्रद्धा को सदैव सर्वोपरि सम्मान दिया। वो भारतीयों के संदेशवाहक और राजदूत थे जिन्होंने ब्रिटेन और भारत के संबंधों के सुधार और भारतीयों के अधिकारों के लिए कभी समझौता नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों के बीच एक अहम स्थान भी बना लिया। 30 जून सन 1917 को भारत के पितामह अपने समस्त भारतीय परिवार को छोड़कर इस संसार सागर से विदा हो गए। ये दादा भाई के कार्यों का प्रभाव था। जो पुण्य काम उन्होंने प्रारंभ किया उसे गांधी जी जैसे उत्तराधिकारी मिले। कोटि कोटि नमन हमारे ऐसे पितामह दादा भाई नौरोजी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन श्री पंकज राग, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की।